कि हम सताए खड़े हुए हैं, सलाम ले लो। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला विल्स देन आई कैन प्रेजेंट दिस नाज़ शरीफ वंस अगेन। दरोज़ा मुबारक नबी अलैहिस्सलाम।

कभी तातों का सुरूर है, सम टाइम्स आई एम एंजॉइंग माई इबादत, माई जिक्र, माई तिलावत, दैट हैप्पीनेस हैज एंटर्ड माई हार्ट. और कभी एतराफ कसूर है, सम टाइम्स ओ अल्लाह आई एम एक्नॉलेजिंग दैट इन डीड आई हैवन बीन एबल टू डू जस्टिस टू एनी इबादत, एनी जिक्र, एनी तिलावत. आई एम एक्सट्रीमली वीक, आई एम नॉट ओबीडियंट टू यू एज आई शुड बी. So I make i'tiraf of all my qusur, all my sins, all my weakness, all my shortcomings. I don't express pride. After a little bit of ibadat, zikr and tilawat, then I go and express great pride. This is I make i'tiraf of my qusur. And when I make i'tiraf of my qusur, then even the angels don't know that how within a short time, from the farsh, I go away onto the arsh. With my tawbah and with my istighfar, the heights which I reach, Allah tabaraka wa ta'ala makes me reach the heights of the muttaqeen with my sincere tawbah and istighfar. He malak ko jisko nahi khabar, wo huzoor mera huzoor hai.

0: क्यों आह में कुछ तासीर नहीं, क्या इश्क से दिल मजरूह नहीं। जब नूर नहीं खुद ही दिल में, मिंबर पे वो क्या बरसाएंगे। When the person does not have noor in his own heart, then what is he going to rain upon people from the mimbar? When there's no noor in the heart, then from where are the rains of noor going to come when he's going to sit on the mimbar and talk? That is the reason why there is no effect.
1: जाएंगी कभी आहें दिल की, बालाए फलक ता अर्श भरी। ये दर्द मोहब्बत के नाले, कुछ रंग तो अपना लाएंगे।

नहीं मैं देखूं जिधर में तेरा तसव्वुर ऐसा जमालूं कल्ब में मिसले नक्शे हजर में तेरा तसव्वुर ऐसा जमालूं कल्ब में मिसले नक्शे हजर में भूल सकूं ता उम्र न तुझको चाहूं बुलाना खुद भी अगर मैं भूल सकूं ता उम्र न तुझको चाहूं बुलाना खुद भी अगर मैं Oh Allah, your name must be engraved on my heart in such a manner that even if I wish to forget you, I cannot forget you. Whichever direction I see, oh Allah, I see you.

यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फ़कत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क से मैं बे

याद में तेरी सबको बोला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लौटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस तादा में आखिर।

0: बैठेगा चैन से अगर, काम के क्या रहेंगे पर, गो न निकल सके मगर, पिंजरे में फड़फड़ाए जा। ज़र्बे किसी के नाम की दिल पे यूं ही लगाए जा, गो न मिले जवाब कुछ, दर यूं ही खटखटाए जा। खोले वो या न खोले दर, उस पे हो क्यों तेरी नजर, तू तो बस अपना काम कर, यानी सदा लगाए जा। खोले वो या न खोले दर, उस पे हो क्यों तेरी नजर, तू तो बस अपना काम कर, यानी सदा लगाए जा।
1: We are the servants of Allah Ta'ala, we are his slaves. Our job is to do what Allah Ta'ala has ordered us to do. Keep tapping at his door, whether he opens or he does not open. Why do we look at that? We must go on tapping, and when the person keeps tapping at the door of one who is Kareem, then when the door opens, then this person will be flooded with the bounties of that Kareem. May Allah tabaraka wa ta'ala give us the tawfiq of making amal.
0: Allah Allah kaisa pyara naam hai, aashiqon ka meena aur jaam hai. Allah Allah kaisa pyara naam hai,